0: सबके लिए।
1: मुअज़्ज़ज़ सामेईन, आज के प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम इसके हवाले से कुछ गुफ्तगु करने की कोशिश करूँगा, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और आप सबको सुनकर समझकर फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौजूद सामईन, जो कलमा तैयब कलमा तौहीद हम पढ़ते हैं उसके दो जुज़ हैं। पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा तैयबा का दूसरा जुज़ है और क़ुरान पाक के अंदर एक आयत का हिस्सा भी, जिसको पढ़कर पूरी उम्मत मुसलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम को दिल से अल्लाह ताला का रसूल मानने का ऐलान किया। हर मुसलमान के लिए जिस तरह एक अल्लाह को माबूद मानना रब मानना ज़रूरी है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम को अल्लाह ताला का रसूल मानना ज़रूरी है कि उनको रसूल माने बग़ैर कोई शख्स कितना ही एक खुदा पर ईमान रखता हो लेकिन वो मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं बन सकता। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगरचे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम तक तमाम अंबिया और रसुल, इन सब पर हमारा ईमान है, इनको मानना, इनके कमालात का एतराफ़ करना और उन तमाम अंबिया का अदब और ताज़ीम करना और उनके मौजज़ात को तस्लीम करना, ये हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। लेकिन कलमाए तैयबा को पढ़कर हमने ऐलान किया है कि हम नबी करीम सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के उम्मती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, सिर्फ़ उनके अहकामात की तामील करते हैं और हुजूर की लाई हुई शरीयत और दीन को हम अमल करते हैं और दिलो जान से मानते हैं।

0: अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आ पाते हैं, आंख रह रह के उठाते हैं कि आ पाते हैं, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आ पाते हैं। अहबाब ज़ीवकार, 6 सितंबर बरोज इतवार, दिन 3 बजे वेतलम सेंटर लिवरपूल में। हर साल की तरह इस मरतबा भी मुस्लिम रेडियो स्टेशन के ज़ेरे तमाम अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होगा, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग अपने अपने अंदाज में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिया अकीदत पेश करेंगे। आप अहबाब से गुजारिश है, खुद आए और अपनी फैमिली को साथ लेके आए, और दुआ है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह सरकार की आमद का जश्न मनाती रहें। शुक्रिया।
1: أتوين إيفنت سبونسر.
2: فضل يا جار، شرب شاي،
1: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني، شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
1: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
1: أتوين إيفنت سبونسر.